0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364660।
1: यति बेला दिउँसोको

0: घर वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल संपर्क 9803364660।
1: रेडियो लुम्बिनी, रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ट्ज़ शांतिको

0: सपना कोई सपना। यो नाम सुन्दा सुन्दा म वक्क भइसके। तिमीलाई थाहा छ त म तिमीलाई कति माया गर्छु भनेर। बिर्सिदेऊ न उसलाई, बिर्सिदेऊ न है।
1: Stop it!
0: Bir sinir çeski bir sinir denir.

नमस्कार, रेडियो लुम्बिनी साँझ 7 बजे हाल खबर में दिवाकर पंथी को स्वागत छ। यह हाल खबर एफएम 96.8 MHz, अनलाइन www.radiolumbini.org, विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन र रेडियो लुम्बिनी को फेसबुक पेज बाट प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ। हाल खबर को शुरू में मुख्य खबर शीर्षक। परराष्ट्र मंत्री खनाल को चीन भ्रमण को औपचारिक तारीख सार्वजनिक, भ्रमण जेठ 31 गते देखि असार 3 गते सम्म हुने। भारतीय सुरक्षाकर्मी सुस्ता प्रवेश गरेपछि स्थानीय को प्रतिकार जवाब दिन श्रम संस्कृति पार्टी का अध्यक्ष सामपाङ द्वारा रक्षा मंत्री को ध्यानाकर्षण। काम नगर्ने 38 जल विद्युत आयोजना को लाइसेंस खारिज गर्न सिफारिश, 75 वटा आयोजना समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सुझाव। सुन्तला रंग को सखरखण्ड पोषक र गुणकारी रिपोर्ट, एमाले लुम्बिनी द्वारा स्थानीय तह का प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई प्रशिक्षण। रासपा को लुम्बिनी प्रदेश नेतृत्व का लागि आकांक्षी को दौड़धूप, भोलि दांग को देवखुरी में प्रथम प्रदेश अधिवेशन को तैयारी। बुटवल उपमहानगर को आगामी आर्थिक वर्ष को नीति तथा कार्यक्रम पारित, देवदह नगरपालिका को आर्थिक वर्ष 2083-84 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले 3 दिने विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, बुटवल को थोक बजार में धादिंग में ल्याइएको काक्रोमा पनि विषादी भेटियो। सामाजिक विकास डिवीजन कार्यालय रूपन्देह द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी को आयोजना, एन्फा को अनियमितता छानबीन गर्न राष्ट्रीय खेलकूद परिषद द्वारा उपसमिति गठन। र फीफा विश्वकप फुटबल में आज राति क्यानाडा बोस्निया एण्ड हर्जगोभिनासँग खेल्दै